0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आम्ही आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून बोलत आहोत। अर्चना हा भक्तिगीतांचा कार्यक्रम आता प्रसारित करीत आहोत। कार्यक्रमात सुरुवातीला आशा भोसले यांच्या आवाजात पी सावळाराम यांची शब्दरचना ऐकवित आहोत। संगीत आहे वसंत प्रभू यांचं।

0: मी आकाशवाणी
1: विश्वासार्ह बातम्या असो न्यूज ऑन एअर ऍप असो अद्ययावत वेब ओटीटी पर्यंत 90 वर्षांचा हा प्रदीर्घ प्रवास
0: तुमच्या सारख्या श्रोत्यांमुळे आहे खास. हॅलो मनभावन श्रोते हो, आकाशवाणी नागपूर सर्व रसिक श्रोत्यांसाठी घेऊन येत आहे सुमधुर मराठी गीतांचा बहारदार कार्यक्रम.
2: सहजीवनात आली ही स्वप्न सुंदरी.
0: हॅलो मनभावन सुमधुर मराठी गाण्यांची
3: सांग तू माझाच
0: तुमच्या आवडीची
2: पाहिले नमी तुला
0: संगीतमय मेजवानी प्रत्येक रविवारच्या दिनी
2: दिसशी तू नव तरुणी काश्मीरी
0: सकाळी ठीक 10 वाजता अवश्य ऐका तुमच्या आवडीच्या मराठी गीतांवर आधारित कार्यक्रम
2: जवळी.
0: हॅलो मनभावन
4: आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून म्हणजेच मध्यम लहरी 512.8 मीटर्स अर्थातच 585 किलोहर्ट्स वरून.
0: रेडिओ संपूर्ण देशाला एका समान सूत्रात बांधून ठेवतो आपल्या सर्वव्यापी परिचयानं.
4: ये आकाशवाणी है.
1: देशातले अनेक रेडिओ क्लब एकत्रित करून 1927 साली IBC अर्थात इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीनं बॉम्बे स्टेशनहून भारतात प्रथम प्रसारण सुरू केलं.
0: नंतर 1930 ला इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस तर 1936 मध्ये ऑल इंडिया रेडिओ अशी स्थित्यंतर हळूवार गतीनं होत गेली.
1: 1957 मध्ये ऑल इंडिया रेडिओनं आकाशवाणी हे पेटंट नाव धारण केलं.
0: आपली आकाशवाणी जगातील एक मोठी प्रसारण संस्था
1: बहुजनांना सुखवणारी त्यांचं कल्याण करणारी आकाशवाणी ज्ञान आणि मनोरंजनासाठी आस्थागायक कटिबद्ध आहे.
5: मैं नेत्रा खेड़कर मैं आज अपना सुंदर अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ. मुझे ऑल इंडिया रेडियो में आने और इस विषय कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला. यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल पूरे होना हम सभी के लिए बहुत खास अवसर है. सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगी. इतने लंबे समय से ऑल इंडिया रेडियो देश भर के लोगों तक समाचार, संगीत, संस्कृति, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाता आ रहा है. इसने अनेक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है और लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है. ऐसे महान और प्रतिष्ठित संस्थान के 90 वर्ष पूरे होने के समारोह में शामिल होना मेरे लिए एक यादगार पल है. यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत कुछ सीखा. इस अवसर ने मेरे आत्मविश्वास को भी बढ़ाया. मैं ऑल इंडिया रेडियो की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करती हूँ. यह अनुभव मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में हमेशा शामिल रहेगा.
6: मेरा नाम आर्या वर्षा नागेंद्र राव है. जैसे ही मैं यहाँ पे आई मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं बचपन में हमारे पास कुछ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता था तब हम सब बैठ के रेडियो सुनते थे हमारे खाना खाने के पहले. तो जैसे ही मैं यहाँ आई मैं काफ़ी नर्वस थी, पर जैसे ही मुझे अतुल साखरकर सर का, विजय राजपूत सर का सपोर्ट मिला तो मुझे ये अपना घर सा लगने लगा. आज भी मैं दूसरी बार यहाँ पे आ रही हूँ बट मुझे अब इतना डर नहीं लग रहा है, मुझे ये अपना घर सा लग रहा है. तो ये काफ़ी एक अच्छी जो फीलिंग है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. जो एक कनेक्टिविटी एक रेडियो रखता है ये कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रख ही नहीं सकता, ये मैं बोलना चाहूँगी. तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और इनका अभिनंदन करना चाहूँगी ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल पूरे होने का. और इस खास अवसर पर मुझे आने का मौका मिला, इससे अच्छी बात तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती. सो थैंक यू सो मच.
7: श्रोते हो, हॅलो डॉक्टर या फोन इन कार्यक्रमाविषयीचं निवेदन आहे का? सोमवार दिनांक 15 जून

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
4: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने

0: भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
4: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष

0: 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा रंग।

0: गार्डियन हॉस्पिटल धंतोली नागपुर प्रस्तुत कॉफी विथ गार्डियन, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर और विविध भारती नागपुर पर एक ही समय। आज हम इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में बातचीत करने जा रहे हैं हृदय रोगों के बारे में, और हमारे साथ है डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा। आप अपने सवाल, अपनी शंकाएं डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा से पूछिए और इस प्रोग्राम में सहभाग लीजिए। हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। फोन नंबर्स हैं 6940067 256 0101 और 2529266 0712। ये STD कोड ज़रूर डायल कीजिए अगर आप नागपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं या आप अपने मोबाइल से कॉल करना चाहते हैं। डॉक्टर निकुंज पवार नमस्कार। डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आप दोनों का स्वागत है आज के इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में। आज हम थोड़ा ही सा टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। आजकल एंजियोग्राफी तो हम सुनते आ रहे हैं, करते हैं, कई कई नई तकनीक एंजियोग्राफी में आई हैं, लेकिन CT एंजियोग्राफी नई तकनीक है, उसके बारे में कई बार सुनते हैं, तो इसमें और जो एंजियोग्राफी करते हैं उसमें क्या फ़र्क है, क्यों की जाती है, और इस CT एंजियोग्राफी के साथ कई टेक्निकल टर्म्स जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे।
1: एक ये जो एंजियोग्राफी इन जनरल टेस्ट है, वो हार्ट में ब्लॉकेजेस है क्या, है तो कहाँ है, कितने हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या ज़रूरी है, ये सब का जवाब देने के लिए जो टेस्ट होती है, जो एक फाइनल गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होती है, वो है एंजियोग्राफी। अभी एंजियोग्राफी करने का एक लगभग पिछले 40 साल से जो एक कन्वेंशनल जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है वो है कैथेटर एंजियोग्राफी। कैथेटर एंजियोग्राफी मतलब हम लोग एक वायर और एक कैथेटर पास करते हैं अपने हाथ या पैर की नस में से, जो हार्ट की धमनी तक पहुंचती है, फिर बाहर से उसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ब्लॉकेजेस कितने हैं, क्या है, एकदम डायरेक्टली दिख जाता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब दूध का दूध पानी का पानी जो करने वाली जो एक सबसे स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है कैथेटर एंजियोग्राफी, स्टैंडर्ड एंजियोग्राफी। आजकल पिछले एक लगभग एक या दो दशक से CT एंजियोग्राफी नाम की एक टेस्ट आई है जो CT स्कैन द्वारा की जाती है, जिसे नॉन इन्वेजिव मतलब जिसमें कैथेटर वायर पास करने की जरूरत नहीं है, ऐसी वो टेस्ट है जो CT स्कैन द्वारा की जाती है। उसका पिछले कुछ 2-4 सालों से प्रचलन ज्यादा हुआ है क्योंकि एक नॉन इन्वेजिव इजी 5 मिनट में हो जाएगी ऐसे करके जिसे प्रमोट किया गया है। अभी तक गाइडलाइंस में उतने स्टैंडर्ड उसे प्रमोशन नहीं है कि हाँ इससे 100% कन्विंसिंग आंसर मिलेगा। उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट हम लोग मान सकते हैं 70-80% है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का एज कितना है, क्योंकि वो कैल्शियम को पिकअप करता है। कुछ एडवांटेजेस उसके ये है कि वो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से ज़्यादा स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि आर्टरी के अंदर के ब्लॉकेजेस के अलावा आर्टरी की जो वॉल रहती है, बाहर की जो परत रहती है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ब्लॉक्स यूजुअली वॉल में बनना फिर शुरू होते हैं और फिर बाद में उसमें पहुंचते हैं अंदर जो ल्यूमेन रहता है उसको ब्लॉक करते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में जब ब्लॉकेजेस अर्ली स्टेजेस में है उसमें बहुत अच्छे से पिकअप होते हैं, कैल्शियम जब ज़्यादा है तो उसमें पिकअप होते हैं। अगर कोई पेशेंट की इच्छा नहीं है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कराने की तो एक CT एंजियोग्राफी करा के देख सकते हैं, या फिर जिसमें हार्ट ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल एक रूल आउट करना है कि कुछ है कि नहीं है अंदर, तो एंजियोग्राफी CT एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं। कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जैसे जिसमें हार्ट की जो नसें है वो नॉर्मल पाथ से जाती नहीं है, वो कुछ अलग जगह से ओरिजिन होता है, अलग जगह से जाती है, इस टाइप के अगर एनोमैली होंगे तो फिर उसमें CT एंजियोग्राफी किया जाता है। बाईपास के बाद में कभी बाद में एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ी तो फिर CT एंजियोग्राफी एक अच्छा टेस्ट है जिसमें ग्राफ्ट्स के बारे में ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन एज सच CT एंजियोग्राफी का कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से बहुत ज्यादा फिलहाल एडवांटेज नहीं है
0: जी।
1: इसके लिए एज एक मार्केटिंग करके जो प्रमोशन होता है तो बहुत सोच के प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट के गाइडेंस से करना चाहिए, ना कि खुद जाके CT एंजियोग्राफी करा लो
0: जी, जी।
1: तो ये एक चीज है। उसमें और एक टेस्ट आई है जिसमें कैल्शियम स्कोरिंग कहा जाता है, जिस सिर्फ मतलब जिसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं इंजेक्ट किया जाता, जिसमें सिर्फ कैल्शियम कितना है अब हार्ट के आर्टरीज में वो समझ में आता है, क्योंकि कैल्शियम जितना ज्यादा मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस उतना ज्यादा। एथेरोस्क्लेरोसिस वो चीज है जो ब्लॉकेजेस पैदा करती है, बनाती है, उस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। जितना ज्यादा कैल्शियम स्कोर उतने ज्यादा चांसेस है पेशेंट के अंदर ब्लॉकेजेस डेवलप होने के, जो

0: ऑलरेडी डेवलप हुए हैं
1: अच्छा
0: उसके ऊपर, तो 300 के ऊपर अगर उसकी वैल्यू रही तो माना जाता है कि सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस होने के चांसेस हैं। लेकिन ये सब डायग्नोसिस के लिए है, लेकिन ट्रीटमेंट का जो डिसीजन है, क्या मेडिसिन देने हैं, कौन से देने हैं, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है कि नहीं, बाईपास की ज़रूरत है कि नहीं, सिर्फ मेडिसिन पे मैनेज होगा क्या वो जो बीमारी है, उसका 100% आंसर आज भी कैथेटर एंजियोग्राफी द्वारा ही
1: अच्छा
0: है। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, जैसे कैल्शियम स्कोरिंग
1: जी
0: और
1: जी एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो,
2: हाँ निस्तौरे बोलतो मी।
0: हाँ बोला।
2: हाँ तो मला प्रश्न विचार सर, ऍसिडिटी आणि याच्यामध्ये जो हार्ट अटॅक त्याच्यामध्ये जो सिम्पटम राहतात, तर हा अटॅक काय म्हणजे कसं काय ओळखायचं?
0: ॲसिडिटी आणि हार्ट अटॅकचे जे सिम्पटम आहे, हार्ट अटॅकचा सिम्पटम म्हणजे असतो अँजायना, त्याला स्पेसिफिक वर्ड आहे। अँजायना म्हणजे जे छातीचं दुखणं आहे ते हार्टपासनं आलेलं आहे, त्याला म्हणतात अँजायना। तर बऱ्याच वेळेस नाही का दोन्हीमध्ये समानता असते, कारण आपलं हृदय आणि आपलं जठर म्हणजे स्टमक दोन्ही आजूबाजूला असतात ऑर्गन्स, त्यामुळे बऱ्याच वेळेस समानता असते। पण मी तुम्हाला सांगतो की हार्ट पेन, अँजायना इज मोर कॉमन दॅन ॲसिडिटी,
1: अच्छा
0: इज मोर कॉमन। पण समाजामध्ये असं मानलं जाते की काही दुखलं तर ॲसिडिटी आहे,
1: ऍसिडिटी, हाँ
0: त्याच्यामुळं जर तुम्हाला 30 किंवा 35 वयानंतर जर नव्याने ॲसिडिटी सुरू झालेली आहे, जी आधी कधीच नाही झालेली आहे, तर सर्वात पहिला प्रश्न आपल्या मेंदूमध्ये यायला पाहिजे कुठे हार्टचं तर नाही आहे, कारण तेच एक असं आहे की जे आपल्याला थोडंसं जीवघेणं ठरू शकते। ॲसिडिटी नाही
1: बिल्कुल
0: असू शकते ती ॲसिडिटी, पण हार्टचं आहे का नाही बघणं गरजेचं असते।
1: बिल्कुल
0: कसं ओळखायचं डिफरन्स जनरल माणसाने कसं करायचं, तर नव्याने सुरू झालेली ॲसिडिटी हार्ट पेन असू शकते, जर टिपिकल बर्निंग सेन्सेशन आहे, वॉमिटिंग सारखी फिलिंग आहे, पण बाकी असं अंगावर घाम सुटणे, दम लागणे असा काही त्रास नाही आहे किंवा चक्कर आल्यासारखं वाटत नाही आहे, तर ते युजुअली सिम्पल ॲसिडिटी असते। आणि युजुअली जर ॲसिडिटी असेल तर तुम्ही ॲसिडिटीची एक ओमेप्रेझोल किंवा पेंटोप्रेझोल नावाची जर गोळी घेतली तर 15 मिनिटाच्या आतमध्ये पूर्णच्या पूर्ण त्रास कमी होऊन जात
1: अच्छा
0: असतो। जर 15 मिनिटामध्ये कमी नाही झाला तर मग तो हार्टचा आहे का नाही बघणं खूप गरजेचं असते। आणि जे अँजायना असते ते टिपिकल छातीच्या मध्यभागामध्ये दुखणे, दाबून धरल्यासारखं, वजन ठेवल्यासारखं वाटणे छातीमध्ये, घाम सुटणे, चालताना दम लागणे आणि कमी नाही होणे, तो त्रास वाढतच जाणे किंवा चालताना वाढणे, हे लक्षणं हार्ट पेनचे
1: बिल्कुल।
0: असतात।
1: एक और फोन लेते हैं। हेलो हेलो,
2: हाँ डॉक्टर साहब जी बोल रहे थे, डॉक्टर साहब से बात करना है।
0: हाँ सुन रहे हैं हम लोग, बोलिए।
2: हाँ, मेरी 4 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई है, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट था, तो 2.5 सेंटीमीटर का जॉइंट डाल के डाली है, स्टेंट डाली है। तो मुझे आपने जो नई मेथड बोला है अभी सिटी स्कैन, उससे क्या मुझे फायदा हो सकता है कुछ मेरे चेक करने के लिए ऐसा?
0: आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है तब उसमें आर्टरी में कैल्शियम था, यूजुअली कोई भी ब्लॉकेजेस में कैल्शियम होता है।
2: अच्छा
0: हाँ कैल्शियम एक मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे हार्ट में डैमेज हुआ है वहाँ पे जो सील बॉडी जिसको प्लास्टर करके सील कर देती है वो कैल्शियम द्वारा ही होता है। तो कैल्शियम यूजुअली हर ब्लॉकेजेस में होता ही है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो आपकी एंजियोप्लास्टी अगर अच्छे से हो गई है जिसमें कैल्शियम वगैरह सब ब्रेक हुआ है और अच्छे से स्टेंट बैठ गया है, और अभी आपको अगर तकलीफ नहीं है तो आपको रेगुलर चेकअप के अलावा दूसरा कोई नया इमेजिंग टेस्ट करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपको कुछ नए सिम्टम आते हैं, जस्ट एक रेगुलर चेकअप करके कोई भी बड़ा टेस्ट नहीं किया जाता
1: जी
0: है, अगर कुछ नए सिम्टम्स आए
1: अच्छा
0: तो एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है या फिर सीटी एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, बट एज ए रूटीन टेस्ट करके नहीं।
1: जी बिल्कुल। हम एक बार श्रोताओं को याद दिला दें, आप सुन रहे हैं कॉफी विद कार्डियन, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आप तक लेकर आते हैं कार्डियन हॉस्पिटल धंतोली नागपुर। आज हम बातचीत कर रहे हैं हृदय रोगों के बारे में। हमारे साथ हैं तज्ञ डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा। हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए, 6940067, 2560101 और 2529266, 0712, ये एसटीडी कोड डायल कीजिए अगर आप अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या फिर नागपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो ये सीटी एंजियोग्राफी के बारे में और ज़रूर जानेंगे और बातचीत करेंगे। पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, मैं रानू बोल रही हूँ।
0: हाँ बोलिए।
3: सर मेरा ये सवाल है कि जो आपने मतलब हार्ट अटैक जो आते हैं, इसमें ऐसी और कौन सी बीमारी है जो इंडिकेट करती है आगे चल के हार्ट अटैक हो सकता है, जो हम टेस्ट करा सकते हैं, तो हम क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं? जिससे ये पता चले इनविजिबल जैसे

0: रहते हैं, जैसे किसी को बीपी है, थायराइड है या वो है, तो
1: नहीं
0: ये मतलब कैसे हम पता करें कि हार्ट
1: नहीं
0: अटैक
1: एक
0: ना
1: रेगुलर
0: आए?
1: चेकअप रहता है जिसको हम फुल बॉडी चेकअप
0: जी
1: बोलते हैं, जिसमें कुछ हमारे बॉडी के जो ब्लड में हमको दिखते हैं चेंज्ड पैरामीटर्स, जिसमें थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किडनी प्लस माइनस हो सकती है, पर ये तीन अगर डिरेंज्ड हैं तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम होने की चांसेस ज़्यादा हैं। उससे आगे अगर हम नॉन ब्लड के पैरामीटर्स में जाएंगे तो ECG, उसमें अगर चेंजेस हैं तो हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तीसरा जो उससे ऊपर हो जाएंगे तो ट्रेडमिल टेस्ट होता है और इको होता है, दोनों में हमको चेंजेस मिलेंगे, तो इससे अर्थ निकलता है कि आपको हार्ट में कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस हैं, उसके चांसेस हैं। और उससे सेकेंड लास्ट इज CT एंजियोग्राफी एंड फाइनल इज एंजियोग्राफी।
0: एंजियोग्राफी
1: तो
0: जी,
1: इतने सारे टेस्ट आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से जाते हो, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेगुलर चेकअप करना। अगर आपका एक टेस्ट 35 साल की उम्र में नॉर्मल है तो अगला टेस्ट आप 3 से 5 साल में करिए, अनलेस के बीच में कोई सिम्टम्स आते हैं तो बात अलग है। अगर सिम्टम्स नहीं है तो 3 से 5 साल में आप टेस्ट करिए। वंस यू आर 40 एवरी 2 ईयर्स इफ़ यू आर नॉर्मल, और अगर कुछ भी अब नॉर्मल निकलता है तो वंस अ ईयर। तो ये मस्ट है, मैंडेटरी है, आप अगर चेकअप करते रहेंगे तो आप प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की तरफ रहेंगे, आप क्यूरेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, आप
0: जी
1: प्रिवेंटिव में रहेंगे ताकि आपको प्रोएक्टिवली दवाइयां दी जा सके या आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया जा सके जिससे आपको हार्ट का प्रॉब्लम ना हो। तो मोर और लेस हमको उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो क्यूरेटिव कार्डियोलॉजी है उसमें बहुत एक्सपेंस है और
0: जी
1: लाइफ
0: जी
1: लॉन्ग एक्सपेंस है, और सबसे बड़ा उसमें अगर हमने सही समय पे डायग्नोज नहीं किया तो वी कैन लूज आवर लाइफ आल्सो।
0: बिल्कुल
1: तो ये इतना कठिन, इतना जटिल प्रश्न है, तो समझता हूँ कि आप अगर रेगुलर चेकअप, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, आप कुछ अपने आधे एक दिन का टाइम निकाल के जाइए और पूरा चेकअप कराते रहिए।
0: जी बिल्कुल। एक और फोन लेते हैं। हेलो हेलो,
2: हाँ नमस्ते मैडम, नमस्ते डॉक्टर साहेब, पवार साहेब।
1: हाँ बोला।
2: सर माझा मित्र 65 वर्षाचा आहे, त्याचा 1.5 वर्षापूर्वी बायपास झाली त्याची, त्याच्या ह्याच्यामध्ये कॅल्शियमचं डिपॉझिट झालं होतं, कारण त्यांनी खूप कॅल्शियमच्या गोळ्या खाल्ल्या आणि मोबिलिटी बिलकुलच त्यांनी केली नाही, आणि वजन त्याचं 84 होतं त्यावेळेला, 84-85। आता त्याचं 1.5 वर्ष झालं, त्याच्या पायावर सूज येते आहे आणि वजन त्याचं 80 वर आलं परत, आणि त्याला थायरॉइडचा प्रॉब्लेम आहे सर, आणि तो एकदम निराश झालेला आहे, परत तो मोबिलिटी बिलकुल परत कमी झाली आहे, जातच नाही कुठे काही, तर काय आता त्यांनी करावं सर? मी त्याला सांगतोय की बाबा तू आहारामध्ये बदल कर, नाही तर काही थायरॉइडच्या वगैरे गोळ्या घे, पण ते वजन
1: नाही,
2: त्याचं
1: हे
2: काही
1: बघा,
2: कमी नाही।
1: सर्वात इम्पॉर्टंट पायाला सूज येत आहे म्हणजे थायरॉइड आणि हार्ट फेलियर, हे दोन गोष्ट आहे जे सर्वात महत्त्वाचे आहे। तर एक इको करून घ्या, बायपास झाला आहे याचा अर्थ नाही की हार्ट नॉर्मल असेल, कदाचित नॉर्मल हार्ट वीक असेल, लोक वीक हार्ट असूनही गोळ्या बंद करून टाकतात, तर ते गोळे सुरू करणं जर बंद केली असेल किंवा जे आवश्यक औषध आहे ते घेणं हे गरजेचं आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला एक इको करावा लागेल।
2: हाँ सर, इको कार्डिया केलाय, तो नॉर्मल आहे म्हणाले, हाँ त्याचं
1: बरं, तर
2: मागे
1: मग
2: सांगितलं होतं ना तुम्ही, तर त्यांनी केला इको कार्डिया, तो नॉर्मल आहे,
1: बरं, मग इको नॉर्मल आहे तर थायरॉइडचं बघा, आणि काही औषध असे असतात ज्याने ज्याने की पायात सूज येते, तर ते तुम्ही तुमच्या डॉक्टरकडे जाऊन ते पायाच्या सूजचं कारण जे आहे, पुष्कळ कारण असतात, किडनी, हार्ट, मग काही आपल्या शरीरात सॉल्ट्स असतात जे जास्त झाले तर पायात सूज येते, तर हे सर्व एक एक पूर्ण टेस्ट करून बघावं लागेल। आणि जर मोटिवेशन नसेल काही कारणामुळे तर ते मोटिवेशनसाठी तुम्हाला सायकोथेरपी घ्यावी लागेल।
0: जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कॉफी विथ कार्डियन, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आप तक लेकर आते हैं कार्डियन हॉस्पिटल धनतोरी नागपुर। आज हम बातचीत कर रहे हैं हृदय रोगों के बारे में, हमारे साथ है डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा। आप अपने सवाल, अपनी शंकाएं डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा से पूछिए और इस प्रोग्राम में सहभाग लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 6940067 256 0101 और 2529266 0712। ये STD कोड ज़रूर डायल कीजिए इन फ़ोन नंबर से पहले, अगर आप अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या नागपुर के बाहर से कॉल करना चाहते हैं। डॉक्टर, अभी ये सवाल जो आया और वो भी बोल रहे थे कि कैल्शियम की गोलियां बहुत खाई और कैल्शियम डिपॉजिट देखा गया, तो क्या ये सही है? और क्योंकि कैल्शियम तो 30-35 के बाद हर एक को बताया जाता है, स्पेशली लेडीज को तो बताया ही जाता है कि आपको कैल्शियम खाना जरूरी है, तो क्या कैल्शियम की

0: गोलियां खाने से हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट होता है?
1: नहीं, कैल्शियम की गोलियां खाने से कैल्शियम हार्ट में डिपॉजिट नहीं होता है,
0: जी
1: वो विथ एजिंग, किसी को डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड, किसी को बहुत ही हाई कोलेस्ट्रॉल है, किसी को अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो जो हार्ट के आर्टरीज़ पे उसके कारण स्ट्रेस आता है, उसके कारण कैल्शियम जमा होने लग जाता है। तो कैल्शियम के टैबलेट से कैल्शियम जमा होता है ऐसा नहीं, बट कुछ स्टडीज़ ऐसे आई है रिसेंटली जिसमें जो आजकल ना हाई डोज विटामिन डी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो अगर बहुत ही ज़्यादा जैसे 60,000 यूनिट वाली या फिर 6 लाख यूनिट वाली जो इंजेक्शंस हैं, ये अगर मल्टीपल डोजेज में दिए गए है ना, तो कभी कभी वो विटामिन डी बोन्स पे जो एक्ट करना है, इट विल एक्ट ऑन एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, तो कभी कभी ऑस्टियोब्लास्टिक ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ये जो होती है ना, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी
1: तो एक हम लोग जो बोलते हैं ना कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन वगैरह जो प्रोसेस है, वो जहाँ पे जमा नहीं होना चाहिए वहाँ पे होना शुरू हो जाता है,
0: अच्छा
1: उसके कारण कभी कभी हार्ट के आर्टरीज में कैल्शियम जमा हो जाना या फिर किडनी में कैल्शियम के स्टोन बन जाना, ये सब होने के चांसेस रहते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो
0: एक और फोन ले लेते हैं। हेलो
2: हेलो,
0: हेलो,
2: नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार।
2: माझा प्रश्न हा होता सर, की मी ईसीजी केली आहे माझ्या छातीची आणि ब्लड टेस्ट पण केली आहे, सगळं नॉर्मल आहे सर, पण कधी कधी काय होते का जास्त काम केलं आपण, माझं शेती शेतकरी आहे सर मी, तर जास्त काम केलं किंवा जास्त असं स्ट्रेस आला डोक्यावर किंवा टेन्शन आलं तर छाती मी दुखते सर, तर हे कशाचे लक्षण असू
1: वय
2: शकते सर?
1: किती आहे तुमचं?
2: वय 35 वर्ष आहे सर।
1: 35 वर्ष। हे बघा, 99% तुम्हाला जे प्रॉब्लेम आहे ते स्ट्रेसचं आहे, हार्टचं नाही आहे। तरी पण जर पुढे तुम्हाला टेस्ट करायचं असेल तर एक ट्रेडमिल टेस्ट करून घ्याल, ट्रेडमिल टेस्ट आणि इको टेस्ट, त्याच्यात जे काही दिसेल त्यानुसार आपण पुढचं निर्णय घेऊ शकतो की पुढचे टेस्ट करायचे की नाही करायचे।
0: जी बिल्कुल। कैल्शियम डिपॉजिट्स के बारे में हम बात कर रहे थे और कैल्शियम स्कोरिंग के बारे में भी, क्या किस एज से ये कैल्शियम डिपॉजिशन शुरू हो सकता है, या एकदम छोटे बच्चों में भी कैल्शियम डिपॉजिट देखा जाता है?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसका मतलब आपने एक्चुअली सवाल ऐसा पूछा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस
0: जी
1: जो
0: जी
1: जो ब्लॉकेज बनने की जो शुरुआत है धमनियों में, कौन सी उम्र से शुरू
0: जी
1: होती है? तो इसका फ्रैंक आंसर है, एज ऑफ 14 से स्टार्ट होता है, 14
0: अच्छा ओ
1: 14 की उम्र से है हार्ट के नसों में या फिर धमनियों में ब्लॉकेजेस के जो शुरुआती पार्ट है, जैसे उसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में फैटी स्ट्रिक बोलते हैं। सबसे पहले होता है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, मतलब जो हमारी नसों को, जो मराठी मध्ये ज्याला म्हणतात आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण, ही जी प्रोसेस आहे ती सर्वात आधी डॅमेज होते,
0: अच्छा
1: ती कमी व्हायला लागते, आणि त्यामुळे आतमध्ये जो रक्तप्रवाह आहे त्याचा फोर्स हार्ट धमनीच्या वॉल्वर जायला लागतो, त्याला एंडोथेलियम म्हणतात, त्याला डॅमेज व्हायला सुरुवात होते, आणि त्याला एकदा डॅमेज व्हायला सुरुवात झाली की बॉडी त्याला रिपेअर करते, कारण बॉडीचं काम आहे रिपेअर करणं। आणि रिपेअर कसं होत असते, तिथे मॅक्रोफेजेस येतात, जे व्हाईट ब्लड सेल, बॉडीचे फायटिंग सेल असतात, ते येतात, तिथे कोलेस्ट्रॉल येते, ते त्यामध्ये जमा होते, नंतर मग हीच प्रोसेस जर कंटिन्यू, त्याला फॅटी स्ट्रिक म्हणतात, त्याच्यानंतर हीच प्रोसेस जर कंटिन्यू राहिली तर तिथे आतमध्ये वॉलमध्ये ब्लॉकेज तिथे जमाव होऊन जातो। आर्टरी कसं असते, बॉडी थोडी कॉम्पेन्सेट करते, आतली जी पोकळी आहे ती मेंटेन करते, फक्त तिची धमनीची जी वॉल आहे ती थोडी बाहेर फुगायला लागते,
0: अच्छा
1: त्याच्यानंतरची स्टेज आहे की आतमध्ये जमा होणे, आणि मग तिथे कॅल्शियम जमा व्हायला सुरू होते। तर आता ते जे 14 वर्षाच्यामध्ये जो फॅटी स्ट्रिक पासून कॅल्शियम पर्यंतचं जी स्टेज आहे ती कमी वर्षाची आहे का ती आपण लांबवू शकतो, ते आपल्या राहणीमानावर आहे।
0: बिल्कुल।
1: ते एखाद्या व्यक्तीमध्ये ते 40 वर्ष सुद्धा असू शकतो तो गॅप, आणि एखाद्या व्यक्तीमध्ये तो 15 वर्षाचा सुद्धा असू शकतो गॅप। तर जेवढं आपली राहणीमान चांगलं तेवढं ते प्रोसेस स्लो होऊन जाते, म्हणजे ते खूप दशके आपण पुढे ढकलू शकतो, आणि जर आपलं राहणीमान चांगलं नाही आहे तर ते लवकर प्रोग्रेस होऊन जाईल।
0: बिल्कुल।
1: आणि
0: एक और श्रोता फोन पे है। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ
1: हाँ
0: नमस्कार,
1: बोलिए।
0: बोलिए।
3: हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ, लश्करी बाग नागपुर से।
1: जी
3: तो सर, ये जैसे हार्ट अटैक आता है तो कई लोगों को सर बैक पे मतलब पेन होता, तो इसका क्या रीजन होता, मतलब कि कुछ लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि बैक पे मतलब पेन होना भी हार्ट अटैक हो सकता है। और सेकंड सर, एक छोटी सी बात है कि कोरोना टाइम में हमने बहुत सुना था कि अगर अर्ली मॉर्निंग खाली पेट अगर इंसान लहसुन जो होता है ना, गार्लिक अगर 2-3 कलियां खाए तो इससे हेल्थ को बेनिफिट हो सकता है, मतलब क्या ये सही है सर आपका ओपिनियन? थैंक यू सर।
1: जो बैक का पेन है, हार्ट अटैक

0: का लक्षण हो सकता है, लेकिन सिर्फ हार्ट अटैक का लक्षण जरूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक हो, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। यूजुअली बैक पेन स्पाइन से रिलेटेड रहता है। दूसरा कारण है हार्ट अटैक, जिसमें हार्ट का जो पिछला हिस्सा रहता है, हार्ट एक गोल रहता है, एक बॉल जैसा रहता है एक जनरल, तो अगर पीछे की दीवार में हार्ट अटैक आया होगा तो उसका जो दर्द है ना थोड़ा पीछे महसूस होता है। तीसरा एक रहता है, उसे aortic dissection कहते हैं, हार्ट में से जो सबसे बड़ी धमनी निकलती है aorta नाम की, उसमें अगर क्रैक होगा तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है पिछले भाग में, स्पाइन के बीच में, दोनों स्कैपुला के बीच में, तो वो अलग ही दर्द होता है। मतलब पेशेंट को महसूस हो जाता है कि ये दर्द मैंने लाइफ में पहली बार
1: जी
0: महसूस किया।
1: जी
0: पीठ में दर्द तो जनरल काफी लोगों को होता है, मुझे लगता है 100 में से 20 लोगों को तो होता ही होगा, लेकिन
1: बिल्कुल
0: वो दर्द बहुत अलग है, हार्ट अटैक का दर्द बहुत अलग है। वो इमीडिएटली पेशेंट कैच कर लेता है कि हाँ कुछ तो अलग गड़बड़ है। बाकी फिर कभी कभी दूसरी चीजें भी रहती है, जैसे नीचे के जो पैनक्रियाज वगैरह के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके कारण भी पीठ में दर्द होता है। तो हर हर पीछे के पीठ का जो दर्द रहता है हार्ट अटैक नहीं रहता है,
1: जी
0: लेकिन उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। वो कारण ढूंढना आपका और आपके डॉक्टर का काम है, और कारण ढूंढना ही चाहिए।
1: बिल्कुल। अभी हम पहले बातचीत कर रहे थे कि 14 साल की उम्र से ये जो प्रोसेस है ब्लॉकेजेस बनने की, ये अगर शुरू हो जाती है, और आजकल तो ये टीनेजर्स में ओबेसिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो क्या जो आपकी ओबेसिटी है वो भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती है, या किस तरह
0: एग्जैक्टली
1: से
0: डायरेक्टली
1: कंट्रीब्यूट करती
0: देखिए,
1: है?
0: जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जो भी फूड लाइफस्टाइल है, आप अगर उसको अच्छे से रहोगे तो ये जो अपना फैटी स्ट्रिक्स जिसको बोलते हैं, और उससे आगे फिर कैल्सिफिकेशन और अंदर पूरा प्लाक्स बनना और प्रॉपर ब्लॉकेजेस होना, ये जो एक प्रोसेस है ये डायरेक्टली फूड डिपेंडेंट है, और डायरेक्टली देर आर सर्टन कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कि टोटल बॉडी इन्फ्लेमेशन, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है बाय ईटिंग फूड्स, ओबेसिटी, अगर सब क्लिनिकल डायबिटीज़ है, सब क्लिनिकल आपको थायराइड है जो आपने डायग्नोज नहीं किया, तो इससे हमारे बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन होता है। ये इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूअसली बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता रहता है, और जब ये इन्फ्लेमेशन बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है तो जो मोस्ट ससेप्टेबल ऑर्गन जो बहुत जल्दी सिम्टम देता है वो हार्ट है, क्योंकि हार्ट की नसें जो है वो लगभग 3 मिलीमीटर की रहती हैं एवरेज, तो 3 मिलीमीटर की जो नस है उसमें प्रॉब्लम आना सबसे पहले होता है। बाकी हर ऑर्गन की नस 6 से 8 मिलीमीटर रहती हैं, तो उसमें जब तक के प्रॉब्लम आता है काफी दशक बीत जाते हैं, उससे बहुत पहले हार्ट में असर दिखने लगता है। तो इसलिए अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल बराबर रखी, सबसे पहले जो जैसे द वर्ल्ड इज बिकमिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी सेंटर पूरा दुनिया में होते जा रहा है, इंडिया में होते जा रही है ये चीज, तो इसके ऊपर मेरे को लगता है पेरेंट्स ने बहुत ध्यान करना चाहिए। और दोनों पेरेंट्स आजकल कमाते हैं, दोनों पेरेंट्स वर्क पे जाते हैं, तो इजी हो गया है आजकल हर चीज ऑनलाइन बुला के खिला देना।
1: बिल्कुल
0: बट आई स्टिल रिकमेंड कि अगर इफ यू कैन अफोर्ड अ बाई और समथिंग, या कुछ कुक कुक कुक करके जाना है, तो समहाउ यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन दैट द न्यूअर जनरेशन
1: जी
0: डोंट सफर व्हाट हमारे से 300 साल पहले के लोग जो 40-45 में खत्म हो जाते थे, वो हमारी जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन शुड नॉट सफर द सेम फेट।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है फोन पे। हेलो हेलो
2: हेलो। हाँ मैडम नमस्कार, मैं आनंद नायडू बोल रहा था। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार बोलिए।
2: ये कैल्सिफाइड जो होता है हार्ट में और एक कोलेस्ट्रॉल में फर्क रहता है क्या?
0: हाँ, दोनों अलग अलग चीजें हैं,
2: हाँ
0: कैल्शियम भी
2: हाँ
0: जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है, दोनों जब एक्सेस में हो जाते हैं तो दोनों गड़बड़ करते हैं। तो कैल्शियम जैसे हमारे पूरे बॉडी का बोन डेवलपमेंट जो है उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। हमारे जो बेसिक क्या कहते हैं, एक ब्लड वेसल की इंटीग्रिटी, ब्लड सेल वॉल की इंटीग्रिटी के लिए कैल्शियम जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, पूरा नर्वस सिस्टम डेवलप होता है कोलेस्ट्रॉल के कारण, अगर कोलेस्ट्रॉल में कम रहा करके बोलते हैं बचपन में घी खिलाना चाहिए, तो ये सब जो चीजें हैं इसमें रॉन्ग नहीं है, पर ये जो दोनों चीजें हैं दे आर इसेंशियल, बट अगर वो एक्सेस में होती हैं तो वो दोनों जाके प्रॉब्लम करती हैं फिर। तो अब प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला वो सब ऑर्गन में करते हैं, ऐसा नहीं है वो फैटी लिवर बनाएगा, वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कभी जॉइंट में हो जाएगा, कभी जाके कोई पैनक्रियास में हो जाएगा, कहीं जाके स्प्लीन में हो जाएगा, लंग्स में हो जाएगा, पर प्रॉब्लम वो कहाँ देता है, वो हार्ट में प्रॉब्लम देती है।
1: जल्दी प्रॉब्लम
0: हाँ, तो हार्ट की प्रॉब्लम बहुत पहले पकड़ में आती है, बाकी प्रॉब्लम

0: प्रॉब्लम इंसिडेंटली पकड़ में आती है, कभी जॉइंट की प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आ जाती है क्योंकि मूवमेंट मोबिलिटी में तकलीफ होती है तो
1: जी
0: इमीडिएटली
1: जी
0: पेशेंट सीख करता है हेल्प। पर जो हार्ट की प्रॉब्लम है इसके कारण, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के कारण, ये जब होती है तो पेशेंट हैज़ टू सीक हेल्प। अगर वो इंसिडियस है यानी धीरे धीरे धीरे अगर प्रॉब्लम है तो पेशेंट लकी है, पहुंच जाता है अस्पताल, चेकअप होता है, वन थिंग टू थिंग फोर थिंग्स, अल्टीमेटली कुछ ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। अनलकी पेशेंट्स विच आर ऑलमोस्ट 40% इन इंडिया, उनका पहला प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक के साथ रहता है और उसमें से उस 40% में से 50% डोंट मेक इट। सो दिस इज द बैड स्टैटिस्टिक्स करके हार्ट को बहुत ध्यान रखना है,
1: जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है
0: बहुत
1: जो अभी
0: बड़ा
1: आप
0: आंकड़ा
1: दे
0: है,
1: रहे हैं, और
0: बहुत
1: ये
0: बड़ा आंकड़ा है।
1: और ज्यादा इसलिए चिंताजनक हो जाता है क्योंकि ये जो एज है जो हार्ट
0: करेक्ट,
1: अटैक होने की,
0: वो
1: वो
0: हर दशक कम होती चली जा रही है।
1: जी।
0: हाँ
1: तो जैसे कि आपने कहा कि हमारी लाइफस्टाइल, फिर से एंड में 2-3 ही मिनट हमारे पास बचते हैं तो वहीं पे आ जाते हैं कि लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करें कि जिस वजह से ये चीज़ों से हम दूर रह पाए।
0: जितनी बार हम ये कहेंगे उतनी बार मुझे लगता है कम
1: बिल्कुल
0: होगा, हर बार इसको हमें रिपीट करना
1: जी
0: चाहिए ताकि
1: जी
0: जो अगर 10 लोग सुन रहे हैं नए, अगर वो 10 श्रोता सुन के वो 10 समझें,
1: जी जी
0: तो सबसे पहले एडिक्वेट स्लीप बहुत
1: हाँ
0: इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट स्लीप एट एडिक्वेट टाइम, नॉट एट 5 AM मॉर्निंग टू 12 AM,
1: जी
0: ट्वेल्व इन
1: जी
0: द नून, वो
1: जी
0: स्लीप टाइम नहीं है। स्लीप टाइम आपका है रात में 11 से 5 या 11 से 6। सो दिस इज अबाउट 5, 6, 7 आवर्स ऑफ स्लीप जो आपको एक नेसेसरी है, जिसमें पूरी बॉडी का रिपेरेटिव फेज होता है। हमारे बॉडी सर्टन एंजाइम्स रिलीज करती है विच रिपेयर, तो वो रात में रिलीज होते हैं। अगर आप
1: अच्छा
0: जगे हो तो वो रिलीज होने पर रिपेयर नहीं कर रहे क्योंकि आपकी बॉडी काम कर रही है, सो यू नीड टू स्लीप एट दैट टाइम, ठीक है ना। दूसरा है सेडेंटरी लाइफ को त्यागिए
1: जी
0: और कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू करिए, वॉट एवर यू, स्पोर्ट्स में अगर आपको रुचि है तो किसी प्रकार का रैकेट स्पोर्ट्स या बैट स्पोर्ट्स या कुछ भी, स्विमिंग कुछ भी आप लीजिए। अगर नहीं कुछ होता है तो सिर्फ वॉकिंग करिए,
1: जी
0: तो ये दूसरी चीज। अगर तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, घर में बाहर का खाना मिनिमम आना चाहिए, बाहर जाके खाना मिनिमम चाहिए। आप घर में खाइए, जितना खाइए घर में खाइए, घर में जितना मैक्सिमम आप खाना खाएंगे, घर का खाना सेहती रहता है, हेल्थी रहता है, और उसमें आप तेल का जो सेवन है उसको आप खींच लीजिए, तो आई थिंक सो यू विल, आपकी जो लाइफ है काफ़ी हेल्थी हो जाएगी।
1: बिल्कुल। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कॉफ़ी विथ कार्डियन, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत किया कार्डियन हॉस्पिटल धनतोली नागपुर ने, और इस प्रोग्राम के लिए हमें आज तकनीकी सहयोग मिला दीपक भुते और मोहन हेडाउ से, प्रस्तुति सहयोग मिला अतुल साखरकर से। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता अरसपुरे। डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा के साथ मैं कल्याणी गोखले आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। कॉफी विथ गार्डियन हा लाइव फोन इन कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी नागपूर आणि विविध भारतीवरून एकाच वेळी।
2: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर म्हणजेच 585 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। ऐकवित आहोत मराठी चित्रपट संगीत।

हिंदी साहित्य पत्रिका विभावरी सुन रहे सभी श्रोताओं को आदेश जैन का प्यार भरा नमस्कार। विभावरी में हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य जगत की और बात करते हैं सामाजिक विषयों पर। साथ ही हम आपसे रूबरू करवाते हैं उन साहित्यकारों को जो साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। श्रोताओं, हाल ही में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिन मनाया गया, जिसका

0: उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ विश्व में जागरूकता बढ़ाना और इसे जड़ से खत्म करना है। तो आइए इसी उपलक्ष में सुनते हैं एक वार्ता जिसका विषय है छीनता बचपन बढ़ता बाल श्रम, और वार्ताकार है ममता कुमारी।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता कुमारी। मेरी वार्ता का विषय है छीनता बचपन बढ़ता बाल श्रम। बाल श्रम समकालीन विश्व की एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय समस्या है जो विशेष रूप से विकासशील देशों में व्यापक रूप से विद्यमान है। भारत जैसे देश में जहां आर्थिक विषमता, गरीबी और अशिक्षा अब भी बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करती है, वहां बाल श्रम की समस्या और अधिक जटिल रूप धारण कर ले। विदर्भ की तपती धूप में पत्थर तोड़ते बालक, शिवकाशी के पटाखा उद्योग में कार्यरत बच्चे अथवा महानगरों के सड़कों पर श्रम करते बालक यह संकेत देते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद भी बालकों की दशा या स्थिति को बयां करती है। वस्तुतः बाल श्रम केवल आर्थिक शोषण का प्रश्न नहीं, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान एवं समुचित विकास से जुड़े मौलिक मानवाधिकारों के उल्लंघन का विषय भी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2002 से 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बाल श्रम के प्रति वैश्विक जागरूकता उत्पन्न करना तथा इसके उन्मूलन हेतु प्रभावी नीतिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करना था। बाल श्रम से मुक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौलिक मानवाधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 1998 की घोषणा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि किसी भी बालक को ऐसे कार्य में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए जो उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक विकास अथवा भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करे। वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 8.7 के अंतर्गत विश्व समुदाय ने 2025 तक बाल श्रम के उन्मूलन का संकल्प लिया था, किंतु वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि यह लक्ष्य अभी तक पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका है। आज भी विश्व स्तर पर करोड़ों बच्चे विभिन्न प्रकार के श्रम कार्यों में संलग्न हैं। भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 10.1 मिलियन बच्चे श्रमिक के रूप में कार्यरत पाए गए। इसके अतिरिक्त भारत में 42.7 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि एशियाई देशों में बाल श्रम की स्थिति अत्यंत चिंताजनक रूप लेती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 18% बच्चे विभिन्न प्रकार के श्रम कार्यों में संलग्न हैं। इन बच्चों को लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है जबकि उन्हें अपेक्षाकृत बहुत कम पारिश्रमिक प्राप्त होता है जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना रहता है। रिपोर्ट यह भी संकेत करती है कि विश्व स्तर पर बाल श्रमिकों का बड़ा भाग विकासशील या तीसरी दुनिया के देशों में केंद्रित है तथा करोड़ों बच्चे आजीविका हेतु बाध्य होकर श्रम करने को विवश हैं। भारत में बाल श्रम की समस्या का ऐतिहासिक संबंध औद्योगिकरण, आर्थिक विषमता तथा सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ है। औद्योगिक विकास के साथ विभिन्न उद्योगों एवं उत्पादन इकाइयों का विस्तार हुआ जिसमें कम लागत पर श्रम प्राप्त करने के उद्देश्य से बच्चों को नियोजित किया जाने लगा। गरीबी, बेरोजगारी तथा संसाधनों की कमी के कारण अनेक परिवार अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहे। परिणामस्वरूप बालकों को पारिवारिक आय में योगदान हेतु श्रम करना पड़ा। सामाजिक पिछड़ापन, अशिक्षा तथा जागरूकता के अभाव ने भी इस समस्या को और अधिक गंभीर बनाया। बाल श्रम की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 पारित किया जो 3 अगस्त 1987 से प्रभावी रूप से लागू हुआ। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य बालकों के नियोजन पर नियंत्रण स्थापित करना, जोखिमपूर्ण उद्योगों में उनके कार्य पर प्रतिबंध लगाना तथा कार्य परिस्थितियों का विनियमन सुनिश्चित करना था। अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक की श्रेणी में आता है। यह कानून उन सभी प्रतिष्ठानों एवं कार्यशालाओं पर लागू होता है जहां बालकों को नियोजित

किया जाता है। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन कार्यों एवं उद्योगों की सूची प्रदान की गई जहां बालकों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। इसमें रेलवे परिसरों में कार, विस्फोटक एवं पटाखा उद्योग, वधशालाएं, बीड़ी निर्माण, पत्थर काटने एवं तोड़ने का कार्य, माचिस उद्योग, चमड़ा प्रसंस्करण तथा अभ्रक उद्योग जैसे जोखिमपूर्ण कार्य शामिल हैं। इन कार्यों को बालकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अत्यंत हानिकारक माना गया। बालकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा शारीरिक मानसिक विकास की रक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम की धारा 7 में बाल श्रमिकों के कार्य के घंटे एवं कार्य अवधि से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए। अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक

निर्धारित किए गए। अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को प्रतिदिन अधिकतम 6 घंटे से अधिक कार्य पर नियोजित नहीं किया जा सकता। इस निर्धारित अवधि में विश्राम का समय भी शामिल है। साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी बालक से लगातार 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जाएगा। 3 घंटे की निरंतर कार्य अवधि के पश्चात उसे कम से कम 1 घंटे का विश्राम अवकाश दिया जाना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, अधिनियम बालकों से अतिरिक्त समय यानी ओवर टाइम कार्य कराना पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी भी बालक को एक ही दिन में 2 अलग अलग प्रतिष्ठानों अथवा 1 से अधिक बार कार्य पर नियोजित नहीं किया जा सकता, अर्थात बालकों के द्वैध नियोजन को निषिद्ध माना गया है। कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बालकों को केवल प्रातः 8 बजे से साया 7 बजे के मध्य ही कार्य पर लगाया जा सकता है। रात्रिकालीन अवधि में बालकों से कार्य कराना कानून विरुद्ध माना गया है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 14 में बालकों के अवैध नियोजन से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अधिनियम के अनुसार यदि कोई नियोजक किसी बालक को ऐसे कार्यों अथवा उद्योगों में नियोजित करता है जहां बाल नियोजन पर विविध प्रतिबंध लगाया गया है, जो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित नियोजक को न्यूनतम 3 माह से लेकर अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास अथवा 10,000 रूपये से 20,000 रूपये तक के आर्थिक दंड या दोनों ही दंडों से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम यह भी निर्धारित करता है कि यदि किसी नियोजक को पूर्व में दोषासिद्ध घोषित किए जाने के पश्चात भी वह पुनः उसी प्रकार का अपराध करता है तो उसके विरुद्ध अधिक कठोर दंड का प्रावधान लागू होगा। ऐसी पुनरावृत्ति की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बाल श्रम की समस्या के पीछे मुख्यतः सामाजिक और आर्थिक असमानताएं उत्तरदायी हैं। अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण बच्चे कम आयु में ही श्रम करने के लिए विवश हो जाते हैं। अभिभावकों की सीमित आय तथा संसाधनों के अभाव के कारण बच्चों की शिक्षा का व्यय वहन करने में सक्षम नहीं होते। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्यालय से दूर रह जाते हैं। अशिक्षा, सामाजिक पिछड़ापन तथा जागरूकता की कमी भी इस समस्या को और अधिक गंभीर बनाती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने बाल श्रम के समस्या को गंभीर सामाजिक एवं मानवीय चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए इसके निवारण हेतु अनेक संवैधानिक प्रावधान किए। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखानों अथवा अन्य जोखिमपूर्ण व्यवसायों में नियोजित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अनुच्छेद 39E राज्य को यह निर्देश देता है कि बच्चों को कोमल आयु, स्वास्थ्य और शक्ति का किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो तथा उन्हें स्वास्थ्य एवं सम्मानजनक वातावरण में विकास के अवसर प्राप्त हो। साथ ही बच्चों को शोषण, नैतिक पतन तथा सामाजिक उपेक्षा से सुरक्षित रखने पर भी बल दिया गया। अनुच्छेद 41 राज्य को यह दायित्व देता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता और संसाधनों के अनुरूप नागरिकों, विशेषतः बच्चों की शिक्षा, रोजगार तथा आवश्यकता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करे। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा की गई। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जन स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार को राज्य प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करता है। भारतीय न्यायपालिका ने भी बाल श्रम उन्मूलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रमिक विधियां पुस्तक के लेखक इंद्रजीत सिंह लिखते हैं कि बाल श्रम की समस्या पर विचार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के वॉलेंटियर नीरा बुरा की कृति बर्न टू वर्क चाइल्ड लेबर इन इंडिया का संदर्भ देते हुए MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि बाल श्रम की समस्या का समाधान एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए अनिवार्य है। न्यायालय ने इस संदर्भ में 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं यानी बाल श्रम निषेध, इसके मूल कारणों का निराकरण, कार्यरत बालकों की सुरक्षा, भविष्य में वैकल्पिक रोजगार हेतु सहायता तथा श्रमिक अभिभावकों के बच्चों के संरक्षण की व्यवस्था पर विशेष बल दिया।
यद्यपि सरकार द्वारा समय समय पर अनेक नीतिगत एवं

0: विधायी प्रयास किए गए, तथापि बाल श्रम की समस्या अभी भी पूर्णतः नियंत्रित नहीं हो सकी। इसका प्रमुख कारण सामाजिक आर्थिक विषमता, गरीबी तथा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव है। अनेक बार प्रशासनिक कार्रवाई केवल औपचारिक अभियानों तक सीमित रह जाती है। गैर सरकारी संगठनों एवं कल्याणकारी संस्थाओं द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु समस्या की व्यापकता के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए बच्चों को कार्यस्थल से मुक्त कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा परिवारों की आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। जब तक गरीबी एवं बेरोजगारी जैसे मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक बाल श्रम को पूर्णतः समाप्त करना कठिन होगा। इसी संदर्भ में नेशनल कमीशन ऑन चिल्ड्रन जैसे संस्थागत ढांचे की आवश्यकता अनुभव की जाती है, जो विभिन्न उद्योगों एवं कार्य परिस्थितियों का अध्ययन कर बालकों के हित में प्रभावी नीतियां सुझा सके। अंत में यह कह सकते हैं कि छिनता बचपन बढ़ता बाल श्रम के संदर्भ में इतना कहा जा सकता है कि बाल श्रम सामाजिक एवं आर्थिक विषमता का घोतक होने के साथ साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर उदाहरण भी है। यह बच्चों को समुचित शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है तथा उसके भविष्य को सीमित कर देता है। अतः बाल श्रम उन्मूलन केवल प्रशासनिक या कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि समाज, राज्य और नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक बालक को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करना किसी भी लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राष्ट्र का मूल दायित्व है। यदि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तो बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में प्रभावी नीति क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता तथा समावेशी विकास को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा और साथ ही नवाचारी उपक्रम भी अपनाने होंगे। धन्यवाद।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे छीनता बचपन बढ़ता बाल श्रम, इस विषय पर ममता कुमारी से वार्ता। साहित्य की विभिन्न विधाओं में से एक है कविता। तो आइए काव्य पाठ के अंतर्गत सुनते हैं राम कुमारी कर्नाहके से उनकी स्वरचित कविताएं।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं राम कुमारी कर्नाहके अपनी स्वरचित कविताएं आपसे साझा कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। चलिए सुनते हैं मेरी पहली कविता, आइए दुनिया देखें। आइए दुनिया देखें, मेरा नजरिया ना भाए तुम्हें तो तुम्हारे ही नजरिए से देखें। आइए दुनिया देखें, सोचना क्या है, दुनिया तो वही है। सोचना क्या है, दुनिया तो वही है, सिर्फ नजरिया तेरा मेरा है। आइए दुनिया देखें, तेरी ही बात करें, तेरी ही बात करें। तू कहे गलत तो चल गलत ही सही, तू कहे गलत गलत ही सही। मेरा नजरिया ना भाए तुम्हें तो तुम्हारे ही नजरिए से देखें। आइए दुनिया देखें। साथियों, मेरी अगली कविता है, कैसे लगता है जब अच्छा नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, कविता का शीर्षक है कैसे लगता है। कैसे लगता है जब अच्छा नहीं लगता, किस डॉक्टर से मिले जब जी नहीं लगता। तबीयत तो ठीक रहती है, बस मन नहीं लगता। एलोपैथी डॉक्टर कहे गोली खाओ काम बनेगा पक्का, आयुर्वेद डॉक्टर कहे तुलसी अदरक सब रोग को पटखनी देता, होम्योपैथिक डॉक्टर कहे मीठी गोली से आराम बनता। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर चाहे कोई भी हो, मन ना लगे तो इलाज सिर्फ दोस्तों की हंसी ठिठोली हो। मगर मुझे तुम जरूर बताना, कैसे लगता है जब अच्छा नहीं लगता। साथियों, मेरी अगली कविता जो खुद से खुद की पहचान दिलाती है, जिसका शीर्षक है याद दिलाती है कुछ बातें। जी हाँ दोस्तों, याद दिलाती है कुछ बातें मुझे मेरे पहले जैसे होने की। याद दिलाती है कुछ बातें किसी की मुझे मेरे पहले जैसे होने की। कुछ से मिलती हूँ तो दिखती है उनमें परछाई मेरी पहले जैसे होने की। बहुत करता हूँ याद खुद को, बहुत करता हूँ याद खुद को, पर याद नहीं आता कैसे था मैं पहले जैसा। याद आती है मुझे खुद की, याद

आती है मुझे खुद की, मेरे पहले जैसे होने की। लोग औरों को ढूंढते हैं, मैं खुद की तलाश में रहता हूँ। लोग औरों को ढूंढते हैं, मैं खुद की तलाश में रहता हूँ। मेरे पहले जैसे होने की याद दिलाती है कुछ बातें किसी की, मुझे मेरे पहले जैसे होने की। अब अगली कविता की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक है शब्दों की थकान। शायद शब्द भी थकते हैं, यकीनन शायद शब्द भी थकते हैं। कभी बात करते करते, कभी लिखते लिखते, कभी सुनते सुनते, शब्द यकीनन थकते हैं। कभी अर्थ का बोझ ढोते हुए, कभी भावनाओं में उलझते हुए, चुपचाप बैठ जाते हैं मौन की छाया में, तब खामोशी आगे बढ़ती है, बिना बोले सब कह जाती है। जहां शब्द थक जाते हैं, वहां मौन आवाज बन जाता है, खामोशी गूंजती है शब्दों का हाथ थामे। शायद शब्द भी थकते हैं, यकीनन शब्द भी थकते हैं। मेरी अगली कविता है समय के साथ। समय के साथ हर अंदाज बदल जाता है, समय के साथ हर अंदाज बदल जाता है। जो छोटी सी बात थी वही ख्वाब बन जाता है, जो छोटी सी बात थी वही ख्वाब बन जाता है। कल जो हंसी बेवजह हुआ करती थी, आज वही पल सुकून बन जाता है। समय के साथ खुशी अब शोर नहीं करती, हाँ समय के साथ खुशी अब शोर नहीं करती, वो चुपचाप दिल में जगह बना लेती है। कभी एक मुस्कान में समा जाती है, कभी यादों में घर कर लेती है। समय के साथ सीख मिलती है, जो है पास उसी में खुशी मिलती है। समय सिखाता है खुशी का सही अर्थ, समय सिखाता है खुशी का सही अर्थ। जो ठहर जाए पल भर साथ, जो ठहर जाए पल भर साथ, वही सच्ची खुशी है समय के साथ, वही सच्ची खुशी है समय के साथ। मेरी अगली कविता है झूठ। झूठ पहले फुसफुसाहट बनकर आता है, झूठ पहले फुसफुसाहट बनकर आता है, फिर न जाने कैसी आदत बन जाता है। होठों से निकलता हल्का सा झूठ, होठों से निकलता हल्का सा झूठ, दिल पर भारी पड़ जाता है। झूठ की चमक बड़ी तेज होती है, सच को पल भर में ढक लेती है। पर समय की धूप जब पड़ती है ना, हर परत खुद ब खुद खुल जाती है। हम कभी डर से झूठ बोलते हैं, कभी किसी को खोने के भय से झूठ बोलते हैं, पर भूल जाते हैं। झूठ पहले भरोसा दिलाता है, झूठ पहले भरोसा दिलाता है, फिर उसी भरोसों को तोड़ता है और रिश्तों को तोड़ता है। झूठ की राह आसान बहुत है, पर मंजिल नहीं होती है। सच की राह कांटों से भरी है, पर सच बोलना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। दोस्तों, मेरी अगली कविता है ख्वाब। ये हंसी ख्वाब हैं जो लाजवाब हैं, जो आंख खुली छिप जाएंगे, जो आंख खुली छिप जाएंगे, हल्की आवाज से डर जाएंगे, एक ही अश्रु से बह जाएंगे, बदली सोच तो मिट जाएंगे। ये हंसी ख्वाब हैं जो लाजवाब हैं, पंखुड़ियों से कोमल, ओस की बूंदों से निर्मल, मिश्री से मीठे, खुशबू से महकते। ये हंसी ख्वाब हैं जो लाजवाब हैं, लहरों से बल खाते, हवा से लहराते, पर्वत से अडिग, जल से भी तरल। ये हंसी ख्वाब हैं जो लाजवाब हैं, पल भर की हस्ती है इनकी, पल भर की मस्ती है, पल में मिटा दे, पल में संवार दे। ये हंसी ख्वाब हैं जो लाजवाब हैं। दोस्तों, अगली कविता की ओर बढ़ते हैं, विकल्प मत बनो। विकल्प मत बनो किसी का, तुम निर्णय बनकर जियो। जो नाम पुकारे आधे मन से, उससे पहले खुद को चुनो। क्यों झुको किसी की शर्तों पर, जब तुम आदर्श बन सकते हो। जो स्वर बने स्वाभिमान का, वो खामोशी से मरता नहीं। जो दे आधा सा सम्मान तुम्हें, उससे कोई व्यापार नहीं। तुम पूर्ण हो यह याद रखो, अधूरी कहानी मत बनो। किसी का सिर्फ तुम बनो, किसी का शायद मत बनो। विकल्प मत बनो किसी का, तुम निर्णय बनकर जियो। साथियों, अगली कविता है अहमियत। मत ढूंढो अपनी अहमियत भीड़ के शोर में, वह छिपी है तुम्हारे हौसलों के जोर में। तुम गिरकर भी उठ सकते हो बार बार, वहीं से शुरू होती है तुम्हारी पहचान हर बार। अहमियत ताज पहनने से नहीं मिलती, वो संघर्ष की आग में तपकर खिलती है।
जो दर्द को ही सीढ़ी बना ले।

0: वही किस्मत की ऊंचाइयों पर जाता है। जब दुनिया कहे तुमसे तुमसे ना हो पाएगा, तभी तुम्हारे भीतर का विश्वास मुस्काएगा, क्योंकि सूरज भी अंधेरे की बाद ही उगता है, सूरज भी अंधेरे के बाद ही उगता है और हीरा भी पत्थरों में ही पलता है। तुम खास हो यह कहने को शब्द नहीं चाहिए, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी गवाही है। मत ढूंढो अपनी अहमियत भीड़ के शोर में, वह छुपी है तुम्हारे हौसले के जोर में, तुम्हारे हौसलों के जोर में। दोस्तों, अगली कविता है ख्वाहिशें। तुम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े रह गए, आसमान नापने निकले थे पर जमीन से ही डर गए। हाथों में सपनों की चमक थी, आंखों में कल का उजाला, पर कभी और शायद के बीच फंस गया हर इरादा। मैंने भी कुछ ख्वाब देखे थे, हाँ मैंने भी कुछ ख्वाब देखे थे और उन्हें पंख लगा दिए, डर के दरवाजों पर हिम्मत के दीप जला दिए। लोग कहते रहे वक्त बदलेगा एक दिन, लोग कहते रहे वक्त बदलेगा एक दिन, और मैंने वक्त से कह दिया मैं ही बदलूंगी ये दिन। अब हर ख्वाहिशें मेरे लिए हर मोड़ पर खड़ी हैं, अब हर ख्वाहिशें मेरे लिए हर मोड़ पर खड़ी हैं। दोस्तों, अगली कविता सुनते हैं। शीर्षक है मैं कवि तो नहीं, मैं कवि तो नहीं पर सच कहना जानती हूँ, भीतर उठे तूफानों को चुप रहकर भी पहचानती हूँ। मैं कवि तो नहीं पर सच कहना जानती हूँ, भीतर उठे तूफानों को चुप रहकर भी पहचानती हूँ। मैं दर्द तो नहीं, मैं दर्द तो नहीं पर दर्द से रिश्ता पुराना है, टूटे सपनों की राख से फिर से खुद को सजाना है। महफिलों की वाहवाह नहीं मुझे, महफिलों की वाहवाह नहीं, ना अल्फाजों का खेल है मुझे, दिल की धड़कन लिख देती हूँ, दिल की धड़कन लिख देती हूँ, बस इतना सा मेल है मुझे। साथियों, जब रात गहरी होती है और चांद भी आधा लगता है, जब रात गहरी होती है और चांद भी आधा लगता है, तब मेरे मन का कवि ताना बाना रचता है, तब मेरे मन का कवि ताना बाना रचता है। मैं कवि तो नहीं पर शब्दों की तुकबंदी हूँ, मैं कवि तो नहीं पर शब्दों की तुकबंदी हूँ। मेरी अगली कविता है जंगल का फूल। फूल हूँ मैं पर नहीं उपवन का, फूल हूँ मैं पर नहीं उपवन का, सुंदरता मेरी भी कम नहीं, क्या करूं बस महक नहीं, आकर्षण मेरा भी कम नहीं, बस मेरा कोई नाम नहीं। जड़ तना पत्ती है मुझ में, जड़ तना पत्ती है मुझ में, पर नहीं जानता मेरी उत्पत्ति में, क्यों मुझे ईश्वर के चरण स्पर्श नहीं, क्यों मुझसे होता श्रृंगार नहीं, क्यों प्रेम इजहार में मैं नहीं जबकि मुझ में कांटे नहीं, क्यों मेरी निगरानी नहीं, क्यों मेरी लालसा नहीं, फिर क्यों हूं मैं संसार में अगर नहीं वरदान में, फिर क्यों हूं मैं संसार में अगर नहीं वरदान में। साथियों, आशा करती हूँ आप सभी ने इन कविताओं का आनंद लिया होगा। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राम कुमारी कर्नाहके से उनकी स्वरचित रचनाएं। आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरी जंग का ये गीत। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सुरेंद्र पाटिल। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आज्ञा दीजिए आपके अपने रेडियो दोस्त आदेश जैन को। नमस्कार।

0: भाऊ जनार्दन भाऊ कोई बात नहीं, रोज सकाळी उठने का, आरशे के सामने खड़ा होने का और गुड मॉर्निंग जनार्दन बोलने का। हाँ देख, खुद से प्यार मतलब खुदा से मोहब्बत। खुद से प्यार मतलब खुदा से मोहब्बत, नकली दुनिया की तू छोड़ दे सोबत, जानेगा तू मानेगा एक दिन, तुझ में ही बसी है सारी कुदरत।
1: वाह वाह वाह मैडम, आप तो बड़ी शायर निकली।
0: डोमल्याची शायर व्हाट्सअप युनिवर्सिटी। रोज झोपेतून उठलं की धड धड धड मेसेज असे तोंडावर आदळतात। पहिले ना मी ते डायरीत उतरवून घ्यायची। क्या हुआ, ऐसा मुंह ऐसा खुला क्यों है तुम्हारा?
1: मैडम मराठी की दिक्कत है ना, तो थोड़ा।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे हम मराठी लोग हैं ना, हमको हिंदी में बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं हिंदी में बोलती हूँ। वो क्या है ना, वो मोबाइल खोला ना तो धड़ मैसेज ऐसे तोड़ पे आदरते थे। पहले तो मैं मैत्रिणियों पर ना ऐसे इम्प्रेशन डालने के लिए डायरी में उतर के लेती थी।
1: मैडम
0: हाँ हाँ हाँ,
1: आप मराठी में ही बोलो, हम समझ लेंगे।
0: हो का बर चाले। मग काय झालं माहितीये का, ते मोब ऐसा है मेरा, मैं बोलने को वैटी ना तो बोलतीच रहती हूँ। कैसा दिया?
1: अरे मैडम पहले खाओ तो सही।
0: नको भाई फुकट नको।
1: फुकट नाही, ये तुम्हारे पैकेज में आहे।
0: हे पण पैकेज मध्ये?
1: और नहीं तो का,
0: चांगलं रिसॉर्ट आहे। अजून काय काय पैकेज मध्ये?
1: ऊपर फाइल है ना, उसमें है काका है। पर एक चीज है, हम बिना पढ़े बता सकते हैं, फोकट में मिलत है।
0: क्या क्या?
1: वो है सुकून।
0: सुकून? सुकून क्या होता है? सुकून क्या होता है?
1: बराबर, आप शहर से आए हो ना,
0: डोंबिली से।
1: हाँ इसलिए आपको पता ना ही है। यहाँ बैठो।
0: काहे?
1: यहाँ बैठो तो सही मैडम।
0: हाँ बस ले बोल।
1: हाँ अब आँखें बंद करो।
0: कहा?
1: अरे बंद करो मैडम।
0: शिवाय चोरबीर नसेल मंगळसूत्रात मध्ये घालते बाई।
1: का हुआ?
0: नाही काही नाही काही नाही, बसले डोळे बंद करते। हाँ
1: हाँ हाँ हाँ, अब शांति से सांस लेवा, शांति से छोड़ा। शांति से सांस लेवा, शांति से छोड़ा, शांति से सांस लेवा। हाँ अब कान से सुनियो ये झरने की करकर,
2: ये पत्तों की सरसर, ये हवा का झोंका, ये बबरों की गुनगुन, ये चिड़िया की चूचू, वो कोयल की कुकू, ये मिट्टी की महक, ये फूलों की खुशबू, वो कैया का हम्मा, वो बकरी की बेबे, सब महसूस करो मैडम, सब महसूस करो, सब महसूस करो, सब।
1: तब तक हम धंधा करके आवत हैं।
2: ले
1: ले चना।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
0: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला

0: संदेश सुनते हैं पोठिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है।
0: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
1: जी,
0: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
1: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है, आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 से 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी।

0: क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं, फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
1: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहां थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुन।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी

0: अपनी जगह पर हैं, रामन अगली बेंच पर है। वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
1: आ गया
2: जॉर्ज, दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना?
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
3: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी,
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
3: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
3: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
3: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
3: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
3: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
3: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
3: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
3: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
3: कंचा?
0: वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
3: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका।

0: सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है,
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो।
2: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
2: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे।
2: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
2: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे। क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
2: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
2: क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
2: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
2: लाओ।
0: मास्टर जी ने कहा,
2: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए,
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने

0: मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
3: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए

0: घर आया। उसकी मां शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर मां के गले लग गया।
1: मां,
2: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख मां घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: यह देखो मां।
2: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
2: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। मां, आंखें बंद कर लो।
2: आ, आ।
1: 1 2 3।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
2: इतने सारे कंचे कहां से लाया?
1: खरीदे हैं।
2: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा।
1: दोपहर को दिए थे ना?
0: मां ने दांतों तले उंगली दबाई।
2: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर मां की पलकें भीग गईं। उसकी मां रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि मां क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ मां को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा।
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: आजपासून सुरुवात आणि महिलांच्या T20 क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत पाकिस्तानचा पराभव करत भारताची विजयी सलामी। इराण आणि अमेरिका यांच्यात शांतता करार करण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे, त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून धुमसणाऱ्या पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे। या करारानंतर अमेरिकेने इराणच्या बंदरांची केलेली नाकेबंदी उठेल, तसंच लेबननसह सर्व ठिकाणच्या कारवाया थांबतील, असं इराणचे उपपरराष्ट्र व्यवहार मंत्री काझम घरीबाबादी यांनी आज प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितलं। इराण आणि अमेरिका 19 जूनला स्वित्झर्लंड इथं शांतता स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य कराराच्या अंतिम मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या करतील, असं ते म्हणाले। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही समाजमाध्यमाद्वारे त्याला दुजोरा दिला आहे। हा करार पूर्ण झाला असून यानंतर होर्मुझची समुद्रधुनीचा मार्ग खुला होईल, असं ते म्हणाले। संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनियो गुटेरस यांच्यासह जगभरातल्या नेत्यांनी या कराराचं स्वागत केलं आहे। कतारचे प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमना बिन जसिम अल थानी यांनी इराण आणि अमेरिका शांतता कराराचं स्वागत केलं, तसंच हा करार करण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले त्यांचं अभिनंदन केलं। या करारामध्ये युद्धसमाप्ती आणि प्रादेशिक स्थिरतेसाठी टाकलेलं महत्वाचं पाऊल असल्याचं ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर यांनी म्हटलं आहे। जर्मनीचे चान्सलर फेडरिक मर्स यांनीही कराराचं स्वागत केलं आणि याचा जगाच्या स्थैर्यावर सकारात्मक परिणाम होईल असे ते म्हणाले। फ्रान्स

0: प्रमाणात शेतीचे आणि जीवांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या वर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाली तेव्हा 100 पेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पावले तर 3000 पेक्षा जास्त प्राणी यांना जीव गमवावा लागला. महाराष्ट्राच्या पातळीवरील हे आकडे आहेत. देशाच्या पातळीवर यापेक्षा जास्त नुकसान झालेले आहे. पावसाळ्यात अलीकडे आणखीन एक आपत्ती भेडसावते आणि ती म्हणजे भूस्खलन. शहरीकरणामुळे शेजारी असलेले डोंगर कोरले जात आहेत तेव्हा पावसाळ्यामुळे भूस्खलन होऊन जीवित आणि वित्तहानी होत आहे. तसेच नदी नाले यांच्या कडेला भराव टाकून घर बांधली जात आहेत तेव्हा नदी नाल्यात पाणी भरून ते शेजारी घरात जाते. मुंबई पुणे यासारख्या शहरात या घटना दरवर्षी घडताना आपणाला दिसतात. त्याचे व्यवस्थापन केले नाही तर मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी होते. गेल्या वर्षी खडकवासला धरणातून पाणी सोडले तेव्हा अनेक घरांना स्थित्यंतर करावे लागले. लोकांना बाहेर काढण्यासाठी NDRFला पाचारण करावे लागले. म्हणून पावसाला सुरुवात होण्या अगोदरच आपण आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन करणे अतिशय महत्वाचे आहे. शेवटी निसर्ग चक्र स्थिर नाही, ते सतत बदलत राहते. आपत्ती सुद्धा येणारच आहेत पण त्यांचे व्यवस्थापन केले तर मनुष्यहानी कमी होईल एवढेच शेवटी म्हणता येईल. धन्यवाद.
1: श्रोते हो, आताच आपण पावसाळ्यातील आपत्ती व्यवस्थापन याविषयीची उपयुक्त माहिती ऐकलीत. लेखन निवेदन होतं प्राध्यापक बापूराव अंधाळे यांचं. हे आकाशवाणी परभणी केंद्राची निर्मिती होती. बरे तर श्रोते हो, भेटूयात उद्याच्या कार्यक्रमात.
2: यानंतर ठीक 2:15 दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून.
3: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी. 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा. प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे. भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी. अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट. सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया. ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया. और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है. ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. और ब्यौरा हमारी संवाददाता से.
4: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी. स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे.
3: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे. भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है. एक रिपोर्ट.
5: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं. इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है. इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे. उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे.

0: अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुँचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
4: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजरा

0: बापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए

पर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: तर मंडळी, कार्यक्रमात वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. तेव्हा तुम्हाला आमचा कार्यक्रम कसा वाटला याबद्दलच्या तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला नक्की कळवा. त्यासाठी आमचा ईमेल आयडी आहे yoaniyearmumbai@gmail.com. या कार्यक्रमाला निर्मिती सहाय्य केलं होतं मैथिली जगतापिनं. या कार्यक्रमाचे सादर करते होते.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की. प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य

0: सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
4: आकाशवाणी नागपूर हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन 22 जून ते 10 जुलै या कालावधीत मुंबईत भरणार। आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा मुख्य कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कोलकाता इथं होणार। इराण अमेरिका शांतता कराराला दोन्ही देशांची मंजुरी, जगभरातल्या नेत्यांकडून स्वागत। नीट UG पुनर्परीक्षेची प्रवेशपत्र NTA कडून जारी। आणि उन्हाळी

0: भारतेन पश्चिमेशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। उक्तं च सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो कारणेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। उत्तर प्रदेशस्य जेवर क्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां सञ्चालनम् अभवत्। अपि च फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडन देशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडांगणे ट्यूनेशिया देशं 5-1 अंकांतरालेन पराजयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्रत्येन प्रधानमंत्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्तवार्ताहर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया सम्बन्धान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तौ। श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयोः रक्षा सहयोगं परस्पर विश्वासस्य प्रमाणं वर्तते। देशद्वयेन रक्षाक्षेत्रे सहयोगं समेधितुम् अपि सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितम्।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एआई इत्यस्य भविष्यं न केवलं नवोन्मेषे अपितु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: अत्रावसरे स्लोवाकिया देशस्य प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भारतस्य समेधमानार्थ व्यवस्थां प्रौद्योगिक विकासं च प्रतिपादितवान्। तेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायी प्रतिनिधित्वम् अपि समर्थितम्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 93वें अब्दे स्लोवाकिया देशस्य स्वतंत्रतायाः अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा स्लोवाकिया यात्रा वर्तते। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। एतेन संघर्षेण विश्वे गंभीरः आर्थिक संकटः जातः, अनेकेषु देशेषु प्राणहानिः च अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक माध्यमेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् भारतस्य आशा अस्ति यत् सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति, अनया व्यापारस्य स्वतंत्रता सुनिश्चिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो इति उष्णतापस्य दुष्प्रभावेण अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्याम् आयोजिते माइंड माइन इति सम्मेलने वित्तमंत्री अवोचत् यत् खरीफ इति ग्रीष्मर्तौ धान्येभ्यः पर्याप्त मात्रायां उर्वरकोपलब्धता वर्तते। तयोक्तं यत् ऐषमः प्राविट् नैयून्यं स्यादिति संभाव्यते, तथापि अस्माकं पार्श्वे पर्याप्त भण्डारः विद्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair

0: चल दूरभाषीय तंत्रांश अपि उपलब्धो भविष्यति। आयुष मंत्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां द्वादशः अंतरराष्ट्रीय योग दिवसस्य भव्यायोजनाय औपचारिक कार्यक्रमाणां शुभारंभो विहितः। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः राजधान्यां नवदिल्ल्यां अवोचत् यत् मुख्य कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे कोलकातायां भविष्यति। अमुना उक्तं यत् अत्रावसरे 45 निमेषात्मकं योगसत्रम् आयोजयिष्यते। मुख्य कार्यक्रमेण सह हुगली नद्यां 500 नौकासु योगसत्रस्य आयोजनस्य योजना वर्तते।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: आयुष मंत्री अवदत् यत् अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य मुख्य समारोहात् पूर्वं गतदिने विशेष योग कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणे योगसत्रे 4,00,000 जनैः प्रतिभागं विधाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्वकीर्तिमानं संरचितम्। अवधेयं यत् अस्मिन् वर्षे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य विषयः स्वस्थ जीवनाय योगः वर्तते। फ्रांस देशस्य एवियन नगर इति नगरम अद्य रात्रौ आरभमाणस्य 50 G7 सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं सज्जम् अस्ति। अमेरिका ईरान देशयोः 70+ दिवसीय युद्धस्य समाप्तये सन्धेः निर्धारणेन एषा सभा महत्वपूर्णेन सकारात्मकेन विकासेन सह अवलोक्यते। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः एमैनुअल मैक्रों G7 देशानां नेतृणां औपचारिक रूपेण स्वागतं करिष्यति। भारतं, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिश्र देशः च सहभागित्वेन शिखर सम्मेलने आमन्त्रिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं श्वः एवियन नगरं गमिष्यति। उत्तरप्रदेशस्य जीवरक्षेत्रे नोएडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां सञ्चालनम् अभवत्। एतत् हि देशस्य नागर विमानक्षेत्रे महत्वपूर्णं सोपानं निर्दिशति। उद्घाटनसमारोहं सम्बोधयन् केन्द्रीय नागर विमाननमन्त्री के राममोहन नायडुः अवदत् यत् विमानस्थानकस्य प्रथमचरणे प्रतिवर्षम् 1.2 कोटि यात्रिणां यात्रानुमानं वर्तते। अनन्तरं प्रतिवर्षं 7 कोट्यधिक यात्रिणां यात्रानुमानं भविष्यति। सः अवदत् यत् एतत् विमानस्थानकं राष्ट्रिय सेवायाः, अन्ताराष्ट्रिय विमानसेवायाः च परिचालनस्य केन्द्ररूपेण कार्यं करिष्यति। विमानस्थानकस्य कृते स्वभूमिं दत्तवतां 70+ कृषकाणां समूह जीवरक्षेत्रस्य विधायकस्य धीरेन्द्र सिंहस्य नेतृत्वे अन्यैः च साकं जेवर विमानस्थानकात् लखनऊ नगरं प्रति प्रथम वाणिज्यिक विमाने यात्रां कृतवन्तः। ऋतुविज्ञान विभागेन देशस्य पूर्वोत्तर भागे उपहिमालयीय क्षेत्रे पश्चिम बंगाले च श्वः यावत् प्रबल वृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। ऋतुविज्ञान विभागेन राजस्थाने, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, ओडिशायां, मध्यप्रदेशे च झंझावातस्य नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपि च उक्तं यत् दक्षिण पश्चिम प्रावेट प्रभावाय स्थितिः अनुकूला वर्तते। एषमः फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडन देशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एफ क्रीडायां ट्यूनेशिया देशं 5 अंकान्तरालेन पराजयत्। स्वीडन देशः द्वितीयार्धे प्रबलं प्रदर्शनं कृत्वा विश्वसनीयं विजयं प्राप्नोत्। अनेन विजयेन स्वीडन देशः स्वस्य विश्वकपस्य अभियानस्य प्रबलम् आरम्भम् अकरोत् इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 वाजलेले आहेत। आता कार्यक्रम साहित्य सौरभ।
3: श्रोते हो नमस्कार। साहित्य सौरभ कार्यक्रमात मी अनुप्रिता भाले आपलं स्वागत करते। श्रोते हो आजच्या कार्यक्रमात आपण संवाद साधणार आहोत साहित्य क्षेत्रात आपली लेखिका म्हणून विशेष ओळख निर्माण करणाऱ्या वृषाली श्रीकांत यांच्यासोबत। आकाशवाणीमध्ये निवेदिका म्हणून त्यांनी अनेक वर्ष काम केलं। ते करत असताना साहित्याची आवड त्यांना स्वस्थ बसू दे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का

0: प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: है स्कीम के टेलीलॉ नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य

0: को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो जो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है, मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग

0: मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए

0: कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें, तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: तो गले को बहुत अच्छी तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं, इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी।
0: जी अनिता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपना आपको थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
0: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है, और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, वो इसके बारे में जानना था। आजादी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी,
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में बताएं। नमस्कार।
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं जी, बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें
0: जी।
2: तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछे क्या सवाल है आपका?
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा?
1: धन्यवाद रवि जी। और आपका जो प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
0: जी,
1: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ होगा। और अनिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां?
2: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
0: जी,
2: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो एक हंसी की बात आ जाती है
0: सभी के लिए।
2: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब

0: होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
1: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका?
2: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ जी, और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है?
1: जी
0: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
1: जी,
0: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है। लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय सांस को भरने में लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को सांस छोड़ने में लगाएं
1: जी।
0: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके सांसों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
1: जी। कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए?
3: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है। बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है और रात में ब्रश करके सोना है
1: जी,
3: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
1: वो
3: उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं। रोटेशन के साथ हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है। इसके अंदर घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद,
1: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे?
4: जी धन्यवाद, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है, तो मैं गुस्से में से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बनाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
0: आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है। और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना। और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं, उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
0: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले, तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
5: हेलो, नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
5: नमस्कार
1: जी, सवाल पूछिए। शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं, कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
0: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है
1: जी,
0: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है। और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय।

0: कुमार। विजय जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मुकेश कुमार जी,
0: जी क्या सवाल है आपका?
1: कुमार जी नमस्ते।
0: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
1: दीजिए और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
2: नमस्कार नमस्कार।
1: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
0: जी,
1: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरे पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
0: जी
2: जी,
1: और योगा करने से

0: और योगा करने से वो ये होगा
1: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें। पहला, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीजों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है। उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफी लाभदायक है। और बैठ करके कटि सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
2: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है, क्या दोनों को करना आवश्यक है?
3: ये दोनों योग के ही अंग हैं
2: जी,
3: प्राणायाम और आसन
2: जी।
3: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजिड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
2: जी।
3: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
2: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
4: जी धन्यवाद, प्रणाम इकट्ठे सर
2: जी, बताइए।
4: सर, जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य, शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
3: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
2: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो बड़ी थकान सी होती है।
3: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो है कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
2: जी।
3: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में, जो कंप्यूटर पर बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातः काल में यदि थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे, तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
2: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
3: नमस्कार
2: जी, सवाल पूछिए।
5: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए आप भी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
2: शुभकामनाएं। जी सवाल पूछिए।
5: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा

0: कर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
1: धन्यवाद ऋषि जी, बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो, शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की ऐसे आंखों में कुछ भी डाल लें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनिता जी ने पहले ही बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
2: और अनिता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
3: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
2: जी,
3: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट,
2: बिल्कुल करेंगे तो होगा। कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
1: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं
2: जी,
1: पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
2: जी।
1: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
2: जी।
1: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत धीरे तेज करने जाते हैं,
2: उसका
1: फायदा नहीं होता, नुकसान होता है
2: जी जी जी।
1: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव यह है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है और खाना जो खाया है वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
2: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या सवाल है आपका?
4: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
2: बहुत अच्छा सवाल,
3: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेट कर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भाती नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है
2: जी।
3: तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
1: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
2: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका?
5: नमस्कार। धर्मवीर गांधी में दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो वे बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है इस बारे में। धन्यवाद।
2: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
3: घर घर की, बिल्कुल बिल्कुल।

0: कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए. जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता. जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी. सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए. मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है तो मैं वहां बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीजों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती हैं. प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी. लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी कि खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना.
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा. और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे कि श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं.
2: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
2: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है. अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए. खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा. और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है बॉडी, एकदम रिफ्रेश रहती है. तो उस समय करेंगे ज्यादा लाभदायक रहेगा, इस तरह से करें ज्यादा लाभदायक रहेगा.
1: और राय बरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमा शंकर वाजपेयी. रमा शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी.
3: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है
1: जी.
3: और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या?
2: जी रामाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद. आपने जो प्रश्न किया, ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी. दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ठीक है, तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा. युवाओं को खासतौर से बहुत बात है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले. तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा. बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगा ही नहीं जाएगी. तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा.
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित. अमित क्या सवाल है आपका?
4: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ जिनको, और मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ. मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है, जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल से रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर, हम लोगों ने इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर या 10 दिन या 1 महीने करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था.
0: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है. आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं. तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है. 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है. और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है. यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके संपर्क में आके आप कर सकते हैं.
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह. इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. शायद उनसे संपर्क कट गया है. अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
0: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें. योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है. यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें. जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पर बैठ कर करते हैं नहीं, वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं. और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं. घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं. रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं. और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है.
1: कमल जी बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम

0: लाभदायक हो सकता है।
1: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम, और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो इस विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है। भ्रामरी प्राणायाम के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें, और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है, तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
0: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा

0: के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil and South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Defence Research and Development Organisation DRDO today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defence Ministry said that the missile achieved all mission objectives, validating critical technologies and demonstrating India's growing long-range precision strike capabilities. Union Public Service Commission UPSC today declared the result of Civil Services Preliminary Examination CSE for this year. UPSC informed that this year against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the Civil Services